0: Bueno, nada más, va a buscar hasta el niño.
1: Sacte todo eso. Sacte aquí, chiricule, sancele, mascare. Disuapa, silicate, la capa no te capa. Chiricule, trabate, romal manate. Y luego me chulo, sacmate, trabate. दिल्ली का मार्च के ठुलो फैन मैं तो कोनी तो सत्य उतारने सब एक प्यार मार्च नाच में गाऊं ना मैंने कुछ ही हुरूप के गाऊं दिल का सब पे मार्च को लाए रा जा मुझे क्या मुंडे त्रिभावरी बता अधेरी

पाक विवास एफएम समय सूचन यो पाक विवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 4 बजे

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सदैव हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9853 87775।